0: राम राम ओ नमस्कार रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि में राम बहादुर थारू संग अंजना चौधरी के स्वागत बा। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र संघकी समन्वयमा रेडियो टाइगर बर्दियासी उत्पादन गर्ल कृषि विशेष रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषिमा कृषि प्रविधि संगे सम्बन्धित मेरमेरिक जानकारी कृषक फुकनसम्म पुगाइकलाक ओ कृषक फुक र कति ऐल खेती प्रणालीमा आयल समस्या प्रश्न जिज्ञासा कृषक फुकनके आशा अपेक्षा गुनासो ओ सुझाव सुनके मेरमेरिक जानकारी देहना उद्देश्य से यी कार्यक्रम सञ्चालन कैगिलक हो।
1: यी कार्यक्रम महिनामा बिचो हरेक महिनाको 1 गते ओ 15 गते सन्झ 7 बजे से रेडियो टाइगर 99.2 MHz बर्दिया ओ ओस्तख अनलाइन मा tigerkhabar.com मोबाइल एप्लिकेशन हाम्रो पात्रो ओ रेडियो के फेसबुक पेज मा सेफे सुन सक्जाय। ओस्तख संवाद FM 98.3 MHz ओ अनलाइन मा onlinesambad.com मोबाइल एप्लिकेशन हाम्रो पात्रो ओ रेडियो के फेसबुक पेज मा सेफे सुन सक्ने बाटी। कार्यक्रम के फेरसो प्रसारण बिहान के 7 बजे सेफे सुन सक्ने बाटी। कार्यक्रम मा राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र ओ कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित विशेषज्ञ हुकन संघ कृषक हुकन के आशा अपेक्षा ओ गुनासो तथा सुझाव के सम्बोधन एवं कृषि क्षेत्र के मेरमेरिक जानकारी प्रसारण गरिने बाटी। कृषि तथा पशुपन्छी हुकन के उत्पादकत्व ओ उत्पादन वृद्धि कैख कृषक समुदाय के आय आर्जन ओ जीवन स्तर उठा के देशभर के कृषि क्षेत्र के त्योहर उत्पादन बढाएकला अनुसन्धान मसे विकसित प्रविधि के प्रकाशन प्रसारण ओ अभिलेखीकरण कैख संचार माध्यम के प्रयोग मसे प्रचार प्रसार करती कृषक ओ सरकार वाला हुकन सम पुगेना काम यी राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र के मुख्य उद्देश्य रहल बा।
0: नेपाल कृषि प्रधान देश हो जहाँ ग्रामीण समुदाय की मुख्य आय आर्जन के स्रोत कृषि पेशा रहल बा। एक ओर ग्रामीण आय आर्जन के स्रोत कृषि क्षेत्र भूल बा ओ कृषि सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान सहज और सरल तरीका से पुगैना परम्परागत प्रचार प्रसार के माध्यम ओथरा प्रभावकारी निर्देश कैलक अवस्था में नवीनतम प्रविधि मस्ते प्रचार प्रसार करकलाक आधुनिक तरीका मस्ते हाली ओ झट्ट सूचना पुगैना सूचना प्रविधि व संचार के माध्यम एकदम उपयोगी हुईना देखमिल्ला कोर्स से रेडियो टाइगर संघ के सहकार्य में यी कार्यक्रम प्रसारण हुई।
1: सूचना ओ संचार प्रविधि से कृषक हुकन के आधुनिक खेती प्रणाली में सहज हिसाब से समय में आवश्यक सूचना ज्ञान ओ सिक्के पहुंच कराके उत्पादन वृद्धि करना मदद करना ओ समग्र कृषि विकास में खास भूमिका निर्वाह करल बा। कृषक के खेतबारी में सड्ड दिन जसिन कुछ न कुछ प्राविधिक समस्या देखा पर्न हिलक ओसे वकर समाधान के लाग सूचना और संचार प्रविधि के प्रयोग से समय में समस्या के समाधान के उपाय कृषक और सरकार वाला हुकन दिए सिक्जाय।

0: la hija de Dios.
1: मैगर सजनासँगे यी बरसके धानके बियार ढैना उखर्ना ओ लगैना कामफे ओरागिल्वा खेतवा ओराखन हरदुवाफे खासेक्ल आजी कार्यक्रम बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिका एक खोदाउके कृषक खुशीराम थारू कार्यक्रमके प्रभावकारिता लैक आइलबाटी।

0: पूजा पुण्या पानी लेके आएगी
1: अप्न हुकर अब रेडियो टाइगर 99.2 MHz बर्दियासी रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि सुन्ती राती यी कार्यक्रम रेडियो टाइगर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद राष्ट्रिय कृषि पद्धति सूचना केन्द्र से मिल्ख तयार पारिलक हो। आप हमरा एकछिन कृषि सम्बन्धी छोटकरी म गतिविधि सुने।
2: मध्य ओ पश्चिम तराईमा औसत से कम वर्षा हुइना पहाड़ी भूभागको पूर्वी तराईमा ओ औसत आसपास उसक बाँकी ठाउँमा औसत से कम वर्षा हुइना सम्भावना बा। धान लगाइबेर खेतवामा वर्षा के पानी संरक्षण गरकला कम पानी ऐना अवस्था बा। ओ यी क्रम जारी रहना सम्भावना देखा गैलक ओर्से धान लगा सेकल तथा लगैना बाँकी रहलक किसान हुक्र सम्भावित जोखिम कम करकलाक सिंचाई की सुविधा हुइलक तथा लगा सेकल किसान हुकन की उपलब्ध सिंचाई सुविधा के दक्षता पुगा के प्रयोग करकलाक धान खेतवा पालिक पाला भिजैना ओ सुखैना प्रविधि प्रयोग करक परत। उसक लगा गैलक धान बाली में झारपात व्यवस्थापन के लाग प्रति लाख क्लोर 25 लीटर पानी में 75 ml के दरले एक रोपनी वा 17 लीटर पानी में 51 ml के दरले एक कठामा धान लगैलक 5 दिन भित्र खेतवामा छिपछिपे पानी हुइलक अवस्थामा प्लाटफेन नोजल के सहायताले स्प्रे गर परत। अब अपने सुन्ती बाटी कृषि विशेष रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि कार्यक्रम के अन्तिममा आशाकल बाटी
1: रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि सुन सकल पाछ आपन मन मन लागल विचार ओ कृषि खेती के विषय में कौनो प्रश्न ओ जिज्ञासा ही कल से अपने होकर अमन फोन में से कह सकने बाकी ओ SMS ईमेल में से फिर लिख सकने बाकी अपन आवाज में विचार ओ प्रश्न धरकला कृषि अनुसंधान परिषद के पैसा निलग्ना फोन नंबर 1135 में देहलक निर्देशन के आधार में रिकॉर्ड कर सकने बाकी उस तरह का रेडियो टाइगर के संपर्क मोबाइल नंबर 98580309161 में फोन कई का रिकॉर्ड कराए ओ टी पाई फे सीखने बाकी उस तरह का

0: रेडियो टाइगर एफएम @gmail.com ओ रेडियो की फेसबुक पेज में आपन जिज्ञासा पठाई सकने बाकी।
1: लिटर रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि के अब्र ऐना भागमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद के कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन अनुसार ऐना हप्तामा अपनाइ सकिना कृषि सम्बन्धी धेर जानकारी सँग अर गतिविधि लेखी ऐना भागमा भ्याट हुने नै बा कार्यक्रमको ऐना भाग फे सुन्ची रवि कार्यक्रम सुनके सुझाव सल्लाह फेर लिखकर पठाइने बाटीकन आशा करती राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र रेडियो टाइगर का प्रबन्ध निर्देशक भावुक योगी कार्यक्रम संयोजक सौगात श्रेष्ठ प्राविधिक विशाल ओ साहना सँग संघरिया रामबहादुर ओमै अञ्जना फे विदा हुन्छी। राम राम नमस्कार।
2: गर्जन छ सधैँ बाघ झैं रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें?
1: मुझे नहीं आता। मैं भी नाच गया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: दैट्स द स्पीड सर।

0: देखो ये बकवास बंद करो, गाने में वक्त जाया मत करो, मेरे साथ चलो, पेपर साइन करने हैं, बाद में जो छक मारनी हो मारो।
1: अरे जान, आप मुझे सपने भी सताने लगा है।

0: प्यार का ड्यूएट गाते गाते जब हीरो हीरोइन ऐसे लॉन्ग शॉट में चलने लगे तो समझ लीजिए लव स्टोरी खत्म, जी एंड, और जिंदगी का पहला चैप्टर शुरू, सगाई।
1: Yo, listen out there! For all you people in love, check out this one!

0: चलोगे हमारे साथ मस्ती के सफर में जिंगल टून्स के साथ?
1: कभी रेलगाड़ी में तो कभी
2: नानी के यहाँ,
0: तो कभी शेर और चूहे के साथ जंगल में, और कभी मामा के साथ मस्ती करने।
1: आइसक्रीम खाएंगे,
2: नंदी बहन से सवाल पूछेंगे।
0: तो चलो फिर हमारे साथ जिंगल टून्स की धूम।